सोच जिस तरह रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों में वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुग अब्दुबा पाप दें बनो के अमल फी की तू बा इटालिया उस दाला के बामों ने उस